0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Chacho। जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है ये, नहीं निकालना ही है तो दृढ़ संकल्प।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: लिए आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच रहा है। बाप दादा भी रेस्पान में कह रही है, वाह बच्चे वाह, हर एक के दिल में कौन सभी क्या कह रहे मेरा बाबा, ये गीत तो सुना है ना बाप बच्चों का। बाप कहते हैं मेरा बच्चा, हर बच्चा कहती है मेरा बाबा, कितना मीठा आवाज। बस मेरा जो कह रहे हैं ना, उसकी कमाल, हर एक की दिल कह रही है मेरा बाबा। बाप की दिल हर एक बच्चे प्रेरित कह रही है मेरा बच्चा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब 9 लाख आएंगे तो साधन स्वतः ही जुट जाएंगे। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। सब साधन मिल जाएंगे, बने बनाए हाल आपको मिलेंगे। बनाने नहीं, सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो, सफलता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

हार बन के गले में परोए गए हो।

Master Sarveshaktivan.

0: ऐसा वरदान सदा याद कर, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रई बन जाएंगे। समय के समित परमान वरदानों को हर समय
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। माँ बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते। सब सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बनाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों की फटाफट कर रही है। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना। सारा दिन बहुत बिजी रहे। बाप दादा ये बात नहीं मान,

0: ऐसी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड चलो, है कोई ऐसा?
1: Nice.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है। विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। या सेवा से दुआएं मिलती है तो स्वयं भी हल्का रहेगा, और जिसके संपर्क में आए संबंध में आओ,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
2: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी। कुछ मिले कुछ मिले, इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जे। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे।

0: क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है। अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई, अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो। सोचो जिसे आवाज सहज फैल जाए, अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स, अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो। कोई भी करे, छोटे करे तो एडवांस मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

правда не їх сам.

0: जो चाहिए वो दे सको, अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी है। कहते हैं हंसाते हैं बाप दादा को, अच्छा है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़ी हो जाती है, लेकिन

सोचना है बस, नहीं करना है, नहीं बोलना है, इस

você.

se va a quedar.

Officers, attention. Controlling power. Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा मधुबन निवासी,

servicio. Sé que te napiares, amigo. Mato vane vasi. Que se va con. Deca. Sapato cuchote. Lo que vi que tiene. Concha la. जैसे मशीन चल रही है तो मधुबन निवासियों की ये सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। मधुबन निवासी चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठ के मुरली नहीं सुना, लेकिन एग्जाम्पल बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों से चाहे फॉरेनर्स चाहे भारत के भी आते हैं, और कहाँ भी देखो मधुबन वाले जाते हैं तो मधुबन के

0: दुष्ट करने का लक्ष्य रखकर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Fucile. Somos de...

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

पसंद चीज तो दिल से की जाती।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी आज भी

Siete.

इसी सिस्टम में प्रभावित होके जाती है। ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहां भी नहीं मिलती। ऐसे अभी

Cierto.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: धरना तो सबके पुराने है, चाहे जवान रहे चाहे छोटी और बड़ों से भी कांकर कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

50%.

0: कल अपनी लैंग्वेज है, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और क्या होते हैं ये पार्ट पक्का हो जाता है ना, मैं बीमार हूँ तो कभी कभी होते नहीं है, मानो कमर में दर्द है, मेजॉरिटी को होते एक टांग दर्द, एक कमर का दर्द, तो कभी खुशी नहीं है ना तो बहाना करेंगे मेरे को कमर दर्द।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिन से किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है, जोश वाला चेहरा दूसरा देख के ही हट जाना चाहिए। चेहरे के नजदीक जाने जाएंगे तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल के देवे, वो फोटो अपने साथ रखेंगे या कागज का रखेंगे या दिल का।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक

0: सोचते हैं हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होना चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चीज अलबेलापन तो नहीं आता। हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती। अब दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट अटेंशन पूरा हो, ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। सेवा के लिए एवा रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवा रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: listening.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना? वो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। तो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? हाँ, देखो इसकी भी विधि बताते हैं। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है, और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास के वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। आप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा के अनुभवी मूर्त सेवादार।

चाय वाचा चाय कर बना चाय समझ सम्पर्क।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं दे, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा। आपके हाथ में और देखा जाता है it

name.

कुछ नहीं मांगते और नहीं

Oggi non mi viene. Oggi non mi viene. Capito?

some.

इसी सदाई मच के लाऊं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का ये संकल्प है कि इस शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे में अपने परिचित अपने मोहल्ले वाले अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में क्यों संदेश दिया, थोड़ा पहले तो देते तो आप भी कुछ बना तो लेते, नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ आओ प्रभु कहते रहेंगे। आप आए, हमने नहीं पहचाना, वो लेना देते रहे। तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर राव उन्हों की तकदीर। लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में उन्हों को संदेश पहुंच जाए। फिर जैसी नेचर, जैसा स्वभाव, उसी परमान अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते। तो ये ओलेना निकल जाए, अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं, ऐसे भी कहती है अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़े आपने पहले क्यों नहीं किया। इसलिए बच्चों का, बाप दादा का जन्मदिन है, जो पुराने है अपना जन्मदिन कौन सा मनाते, शिवरात्रि मनाते है ना। तो इतनों के जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो, ठीक है? बांटेंगे, हाथ उठाओ, कोई भी वंचित नहीं रहे किसी भी विधि से। फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? पालना। कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको

0: भगवान की दृष्टि से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक पापा का बच्चा, पापा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन कितना से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संगतोष में बहुत दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष पे नहीं है। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष पे नहीं है। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा। άγιο όλοι κάτενε. Εσύ πάτε σαματάρ πανκή τσαλάτο. Φερπή του λέτ και πόρτσε άκη παταλτσέω παύτα τα μάτα τκαρίνα λέκεν σατσίτελ.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, पाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे सम्मत संपर्क में, फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पिर्चा तो बनती जाएगी, साधारण पिर्चा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

परिवर्तक आत्माओं के लिए

Papa Johnny.

Oh.

Yes, sir.

up. Salva.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी प्रमाण एक दो में अपनापन अनुभव कर, को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना? हर एक यही सोचो, सब अपने महसूस ऐसे।

0: कभी सब इस सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन सभी के दिल में छोड़ना है और क्या बनना है।

Barış geliyor.

हर बच्चे के लिए। क्या चाहता है?

Awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलते हैं ना, तो जैसे विस्तार फिरकिया होता है ना, तो बीच उसमें छिप जाता है। ऐसे वो समझते ऐसे है कि हम विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहती है ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो फिस्ट बॉल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती, दिमाग की एनर्जी भी ज्यादा बोलने वाले की कम हो जाती। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देती है मेरे को टाइम नहीं है इतना सुनने का, लेकिन जब खुद सुनाती है तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने कसानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चला रहे अगर मत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: nějaký zobatle. To neště.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

चिका।

सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने की, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो, एक मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, फास्ट गति है ना संकल्प की, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समृद्ध रहे, कितने साधारण रहे।

0: soirs. Yo pité.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेंगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, ये टीपी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार खत्म हो नहीं है, ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट, जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। तो क्या आपकी अध्यात्मक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सके। अभी क्या है,
2: बेबी।

0: मनोबल की बड़ी महिमा है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चिल्ला रही है, रैम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्व आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो किसी की भी पालना लौकिक में भी भरोसे होती है, वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पर आई जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे आपने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य सारे वृक्ष के डाल डालियों और पत्तों की पालना करना। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्मा रूपी डाल डालिया या पत्तों को सकाश दे रहे। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी सुना।

去死呗。一个第一个美丽孙子嘎的美丽内家的呀，一个所里给孙子嘎的संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वो ही संस्कार है। उस समय सोचो ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? Shove a power.

समान बनने का और लक्षण रहे।

मिक्स हो जाते हैं ना, अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, संस्कार बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

कभी कभी लेना ही पड़ता है। जब नाम ही है दुख, दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है समझते हो, खराब समझते हो ना, तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है। खराब चीज अगर आपको देता है कोई, तो आप ले लेते हो। Son.

ईशान कौन होगा? जहां किचरा होगा वहीं परेशान होंगे ना। तो उस समय

Osama.

स्वरूप में देखो। जानते हो आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अच्छा,

नहीं दे रही है।

0: que acártelse. Chao.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सब
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Show.

Jason Callum Comer, Fierro 7.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और जलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन
4: say

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझती है कि बच्चे खड़ी खड़ी तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का सदा आगे बढ़ाते, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलते है। बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान, सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए निमित्त बने हुए हैं, और द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी जो भी पांडव जय सत्य जो निमित बन के कार्य कर रही है वो अच्छा कर रही है।

0: लक्ष्य रखो कि बाप की प्रत्यक्षता हो, सब कहे कि ये कार्य करने वाला कौन, भगवान आ गया, हमारा बाप आ गया, अभी ये बस ना आवे, अभी ये कोशिश कर ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे, ब्रह्मा कुमार कुमारी अच्छे, लेकिन प्रत्यक्षता तो होनी है, तो ऐसा कोई तपस्या करो, सेवा का प्लान बनाओ जिसमें ये सिद्ध हो जाए, बाकी जो चला रहे हो वो ठीक चल रहे, हर एक अपने अपने सेवा अच्छी कर रहे, बाकी जो परिवर्तन लाना है सभी के ध्यान पर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारथ सेवा नहीं। कोई ना कोई कमी है सेवा में, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश निमा घिरा हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगा। चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन के सेवा के तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच भी जारी चलते रहे, ये नहीं ये, ये नहीं ये, और आपके खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की, उन आत्माओं के वायुमंडल खुश हो जाए। ये सेवा खुशी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा आज भी सभी बच्चों को चाय यहाँ बैठी है, चाय अभी तो

राज के पाठ।

चल रही है, चलती

So

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक की अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है। तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते। और बाप उन बच्चों को देख सूखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनको भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: और बाप को भी

की बातें हर कर्म करते याद रहते।

Yeah.

0: और बाप के दिल में कौन मेरे बच्चे। ये संबंध संगम युग की सौगात।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: रिजल्ट आती है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Peace.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपन लगाओ का सोपन सजा

और बाप दादा इतने सब बच्चों

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है। और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, लेकिन मानो बीच बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? याद आ गया। अच्छा, एक शब्द है मैं अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वो ही होना चाहिए। और जब होता नहीं है, ये अपमान, अपमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं देहमान में भी लाता हूं, मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। जिसका अपमान अंश मात्र भी है उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे, शराबी कोई कहेगा ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंधा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा।
0: शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहे समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाएं। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे बेकारी आत्माओं को ये समृद्ध आत्माएं इस बेकारीपन से मुक्त करो।

0: कोई मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, तो आपको खुद लगेगा के और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीवर शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये तो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा

0: mana ke Malik? Cik mana ko ese jalau? Jaise paon aur paon ko jalate ho, jo chahte ho wo karte hai na. अभी आप जाओ यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना. ऐसे माइंड कंट्रोल जो चाहे वही मन संकल्प करे. रोज रात को रिजल्ट देखो. आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही? अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समर्थ बन वायुमंडल में समृद्धपन की शक्ति फैलाओ. बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते. सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार. करना ही है, करेंगे, देखेंगे ये के नहीं चले.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

इस मोटे रूप से

निकालना, बाप दादा आज नहीं सुनाते। हिंट तो दिया ना, तो निकालना। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार है। सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनेंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है ऐसे ही बोल करम सब। Say.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोदा हुआ है, था और है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देवर पुरुषार्थे के लक्षण

Dos.

Et c'est...

I'm so

विशेष पाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध

Sećan, budi kar.

Schweinchen.

Gianna

संपर्क में इसे, स्वभाव में इसे, सेवा में इसे संतुष्ट करने में इसे संतुष्ट रहने में।

0: веселее, пап, да-да.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tchau.

பாருங்க.

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ, दो हाथ नहीं एक। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो, बहुत अच्छा। मानते हो, बहुत अच्छा। लेकिन

Hello.

0: ब्राह्मण जीवन में आने के बाद पाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि पाप का बनने से
1: संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन

much, Lizzie.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

见你。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने कई बार इशारा दिया कि समय अचानक और नासिक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक। समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे। तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे? इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Maximum.

passion, Carson.

Mary, Fred.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का ईशा और साथ मुश्किल

0: चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेहद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अबे संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। अभी अपना कृपालु दयालु दुख हरता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताए तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अबे हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार से

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पापा ने देखा कि कमजोरी देती तो लेकिन फिर वापस ले जाने देखो वो वापस नहीं आता। ये सोचेंगे कि ये मुझे छोड़े या मैं छोड़ू, कौन छोड़ेगा कौन? अच्छा अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए दोबारा फिर क्या? फिर रख देंगे ना, रखेंगे कि फेंक देंगे, फेंकेंगे तो ये चीज क्यों नहीं फेंकते? अगर गलती से आ भी गई तो जब आपको पसंद नहीं है और आपको वो चीज आपके पास फिर से आती है तो क्या आप गंदी चीज संभाल के रखेंगे? रखेंगे कोई भी किसको गलती से भी अगर कोई खराब चीज दे देवे तो क्या करेंगे? अलमारी में सजा के रखेंगे? नहीं नहीं, नहीं। violent. ये बाप दादा कहते हैं वापस लो. श्रीमत है ये, नहीं है ना? फिर क्यों करते? वो तो वापस आएंगे, क्योंकि उसका आपसे प्यार है, लेकिन आपका प्यार नहीं है. उसको आप अच्छे लगते हो और आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो क्या करना पड़े? तो अभी आज कम से कम जब फर्श 5,000 वर्ष के लिए विदाई लेता है, तो आप कम से कम ये छोटा सा ब्राह्मण जन्म, एक ही जन्म है, ज्यादा नहीं है, एक ही है, और उसमें भी कल का भरोसा नहीं. तो वो 5,000 की विदाई लेती है, तो आप कम से कम एक जन्म के लिए तो विदाई दो. दे सकते हो? हाँ जी, तुम करते हो. लेकिन जिस समय वो वापस आती है ना, तो सोचते हैं यह बड़ा मुश्किल है, छूटते ही नहीं है ना, क्या कर लिया? छोड़ो तो छूटे. वो नहीं छूटेगा, आप छोड़ो तो छूटेगा, क्योंकि आपने उनसे प्यार बहुत कर दिया, तो वो नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा. तो पुराने वर्ष

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बच्चों को देख खुश

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज वही चीज हो गई। Hold on. गोली चलाते भी हैं और रंग लगाते भी हैं। तो आप सभी सो

Sivan begick tystnad gärna. Abicka besvapan med

0: Санкалапка. Апанесе.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Suck.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप की मदद तो है लेकिन समय पर।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Percentage.

0: किस समय योग में अच्छी है, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक बार बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो, क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने। तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाते हैं वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थे। तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

姐。

बच्चों के आगे हसोरा हसरे।

सदा विजयी बनना। जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: उससे ज्यादा

Miss Jessie.

Ricky.

your girl.

Sei jung.

0: Isa ano ba ako? Practical Mellow.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो तन में हलचल हो प्रवृत्ति में हलचल हो सेवा में भी हलचल होती है तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं ना, बीमार हो के तो रोना शुरू कर दें, दर्द हो गया दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएंगी के बारे जी जब हिसाब किताब आ गया दर्द आ गया तो हिसाब किताब तो दिल शिकस्त सी

हिम्मत वाले बन, तुम पाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, आए क्या करो क्या करो, और फिर सोचो बाबा तो मदद दिए, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत। पहले बच्ची की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं। तो आते अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देखते ही नहीं। पहले आप शिकस्त नहीं मन, और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है, ऐसे समय पर निर्णय शक्ति शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होगे तो हाँ ना हाँ ना इसी उलझन में रह जाए। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो, और तन भी नीचे ऊपर होता है, जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग क्या हो उसके, तो नहीं। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है, सच्चे है, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर।

जब आप लोग खुद कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, परिवार में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी है, लेकिन आप ट्रस्ट

रस्तीपन की सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं ये मेरा पन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करते, ये मेरा बनाता है ना तो सब बातें, मेरा जहाँ भी आया वहाँ उत्ती का फेरा हो जाता है, बदल जाती। अगर उत्ती कहाँ भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरा पन, उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे। इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। हाँ ये बात है, क्या नहीं बनेगी।

0: son Joe's father.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसी कोई

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, पेस्ट अभी भी
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक स्टॉक जमा कर, दोनों सरों

Israel.

0: ocha karanaharse karanahe. ये बेत की सेवा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: कैसे बना? बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं, लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो, जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारियां देती है, ब्रह्मा कुमार देती है, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोलने के लिए। अगर एक पॉइंट रही हुई है, गीता का भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होगी ना। जब ये सिद्ध हो, तब कहे भगवान आ गया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कि बाप दादा ने सभी बच्चों

Tschüssi.

hos det henne. Nej, vad det smäcker.

कुछ

इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगा शेखर।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप भी फ्रिश्ता ड्रेस जैसे बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

接根的，在心里给生命。

नोट करना, सुबह को उठते चेक करो, सब

citrome. Sada. Ta beltage. Tua por me. Kai rajee.

che se bio. Shit, it guys, I'm

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Gefahren.

Шатера. Any problem?

Ciao, proprio.

Fita.

0: casa, Nicky. Tataku. Mira, Panalia. Si cabal carnaval y pachiona.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्यूटी को रायलिटी, पर्सनलिटी, रियलिटी, रायलिटी कहा जाता है। तो अपने रॉयलिटी को याद करो, अनादि रूप में भी आप पाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो, फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप रॉयलिटी याद करो। सभी के सिर पर रॉयलिटी का लाइट का ताज, अनादि आदि और किसकी नहीं है। नेताओं का, अभिनेताओं का, धर्मात्माओं का चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा विशेषता कितनी रायल है। चित्र को देख करके ही सब खुश हो जाते, चित्रों द्वारा भी लेते, तो ये सब रॉयलिटी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन जन्म सिद्धाधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा। उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा इस जनवरी में

serap.

0: पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र डबल पवित्रता प्राप्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप तो विश्व के परिवर्तकों, विश्व कल्याणकारियों, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं बोलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते अपना हक लेने के लिए, कितना प्रयत्न करते अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना बर्बादम हक, मैं कौन हर समय जो काम करते हो अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखो? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले बिना बिना टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है? मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है? ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आते हैं ना, आते हैं, माताओं को आते हैं, माताएं अपना आप भी प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपने बुद्धि में इमर्ज रखना है? बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: That

0: पैसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। पता हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Riddick.

Sam.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Nick limpiasi. Essi forte mansa me. Shoot. Shanti me. Suco me. Vibration kipiasi. Vibration rupasi. Vibration velasa. Frishta Artan Sada Uch Istati Me Rehne Vani Frishta Artan Purane Sansar Ar Purane संस्कार से नाता नहीं अभी संसार परिवर्तन आप सबके संस्कार परिवर्तन के इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी कोई कमजोर है तो सहयोग दो ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ सहयोग दो तो इस वर्ष के टॉपिक संस्कार परिवर्तन फ्रिश्ता संस्कार ब्रह्मा बाप समान संस्कार सेज पूछा रहते हैं या मुश्किल सर्वशक्तिवान बच्चे अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलो अभी वायुमंडल को आपकी Shut up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Thank you.

याद करते हैं ओ मेरे लाडले बच्चे। Awesome.

hacerle. Se me va.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना से

0: Charles Patau, com ara que pena sense Charles Té. Ai, Charles.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: अवश्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन आप संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और अलौकिक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

ਮੈਨਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ।

Use.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। I'm sorry.

Sneaky mala. Bab ko penai. Yo ke har baca. Jan. Yes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

つける。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कहीं बच्चे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: dicen es robar tus टेंशन में।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चाहते फुल स्टॉप है

Mr.

ऐसे समय

0: Kätzchen. Abgang. बहुत सहयोगी बने।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।